श्रोता अभी आप सुन रहे थे रागिनी के स्वर में ये राजस्थानी लोकगीत। आपको बता दें कि आज लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में हमने आपको कुछ राजस्थानी लोकगीत सुनवाए, जिसमें विनोद राठौर, सीमा मिश्रा और रागिनी के स्वर थे। संगीत संयोजन श्री अरविंद सिंह का और गीत लिखे थे श्री कन्हैया लाल सेठिया और श्री निर्मल मिश्र ने। इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। तो श्रोताओं आजिए रेडियो सेट के पास या बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज।

कार्यक्रम के शुरू में हमने सुना फिल्म अर्पण का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं सूरतगढ़ राजस्थान से नरेश वर्मा, भूपेंद्र सुथार, रोहिता शर्मा, शिपा शर्मा, गुलशन मेघानी, कुंदन कटारिया, विकास पारिक, कमल पारिक। गाजीबाद से खत लिख रहे हैं गौरव, नताशा, नीलिमा, प्रगति, सुरेश और उनकी पूरी मित्र मंडली। कमलागंज बाबू क्वार्टर के पीछे से शिवपुरी से खत आया है कन्हैया कुशवाहा, भारती कुशवाहा, ध्रुव, सोनम, गगन, अशोक कुशवाहा, दुर्गेश कुशवाहा और सुरेंद्र सागर का। बरेली से खत लिख रहे हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूंढने, वैष्णवी ढूंढने, चंचल ढूंढने, राजेश ढूंढने और अर्जुन गवनकर। साथ ही इसी गीत के लिए काली माता मंदिर के पीछे करैरा से खत लिख रहे हैं मोनू झा, मितेश झा, नैना, मोनू, विकास झा। शिवाजी चौक राजम छत्तीसगढ़ से ये खत आया है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव का। एक खत और है ये उदयपुर राजस्थान से बीना चित्तौड़ा और उनकी पूरी परिवार ने भी इसी गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी। तो उम्मीद है कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना अपनी फरमाइश का। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दादा से, येसुदास की आवाज, कुलवंत जानी ने गीत को लिखा है, उषा खन्ना का संगीत है। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्ष्मणपुर से खत है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू का, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरेगी से भगवत वर्मा, पुणे से अर्चना सानेकर और उनका पूरा परिवार, इंदौर से खत लिख रही है वंदना तिवारी, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, मामा वैद और नीतू वैद ने हमें खत लिखा है। इसी गीत के लिए छत्तीसगढ़ रायगढ़ से प्रशांत मिश्रा और उनका पूरा परिवार हमें खत भेज रहे हैं। पनागढ़ जिला जबलपुर से संजय सोनी, सुल्तान सिंह तरड़, हनुमानगढ़ राजस्थान से हमें खत लिख रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दादा का ये गीत येसुदास की आवाज में और इसी के लिए एक खत और है हमारे सामने और ये आया है सूरतगढ़ थर्मल राजस्थान से सौरवी भवितम स्मृति जोशी का, कोटा राजस्थान से हरिओम शर्मा, कविता शर्मा और प्रहिता शर्मा। आप सब ने भी इसी गीत के लिए हम तक खत पहुंचाए हैं। आपका खत आए और हम शामिल ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दादा का ये गीत। और दिल के टुकड़े टुकड़े तो हम नहीं होने देंगे अपने श्रोताओं के, जिन्होंने इस गीत की फरमाइश की थी, उसमें से एक खत और है। ये खत आया है सूरतगढ़ राजस्थान से गुलशन मेघानी, सीमा मेघानी, देव और निलेश मेघानी का। इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी। आप अपने दिल को संभाल कर बैठिए, और भी गीत है आपकी फरमाइश के। फिलहाल एक अंतराल आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन, ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में, या टोल फ्री नंबर 1800420233 पर कॉल करें।
3: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन, ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में, या टोल फ्री नंबर 1800420233 पर कॉल करें।
0: आइए अब आप

को सुनवा रहे हैं फिल्म दाग का ये गीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोताओं के नाम हम आपको पहले बता रहे हैं, फिर बताएंगे ये गीत किसने गाया है और किसने लिखा है और किसने संगीत दिया है। पहले हम आपको बता दें कि इस गीत को पसंद किया है चिरमिरी कोरासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, बिलासपुर बस्ती बारादवारा से नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्र लहरे, बिलासपुर केरा रोड मिसादा से खत लिख रहे हैं पूनी राम कश्यप, खगेश्वर कश्यप, अंबिकापुर महामाया रोड से खत आया है अब्दुल वाहिद खान और सलमा बेगम खान का, सतनबाड़ा से खत लिख रहे हैं दीपक बाथम, नई दिल्ली से खत लिख रहे हैं हमें प्रियंका शर्मा और गणेश शर्मा, गणेश कॉलोनी शिवपुरी से कालीचरण ओझा, उषा, शुभम, कुमकुम, शिवानी, हरिओम, गुड्डी, रितेक, ऋतु, हर्षित, दिनेश और बबीता ओझा का खत भी इसी गीत की फरमाइश के लिए आया है। न्यू ब्लॉक शिवपुरी से खत लिख रहे हैं सौरभ गौड़, आकांक्षा गौड़, ईशिता और कृष्णा गौड़, अंबिकापुर रायगढ़ से चरणजीत कौर और रैना गुप्ता ने भी हमें इसी गीत की फरमाइश की है, सूरतगढ़ राजस्थान से अनिल कौशिक, शोभा और पारितोष आशुतोष भी इसी गीत की फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं, मनोज कपूर अलकापुरी ग्वालियर से खत लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि इस फिल्म का कोई सा भी गाना हमें सुनवा दे, तो आइए सुनवा रहे हैं आपको फिल्म दाग का ये गीत।

0: सुन रहे थे आप फिल्म द कई गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। साहिर की रचना को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कि अब चाहे कोई भी रूठे, रूठिए या नहीं, आते हैं एक अंतराल के बाद। उसके बाद आपकी पसंद का एक और प्यारा सा नगमा है हमारे पास। तो कौन सा नगमा है? अंतराल तक बने रहिए, पता चल जाएगा।
1: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।
2: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
3: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
1: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।
0: तो इस अंतराल के बाद हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत है ये गैम्बलर फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। फरमाइशी नाम हमारे पास इस प्रकार है। सूरतगढ़ राजस्थान से खत आया है अनिल कौशिक, शोभा, पारितोष और आशुतोष का। नाहौर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से खत लिख रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, मधु, डॉक्टर प्रांजल। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से खत आया है कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी, संजना, मालती, स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी, ललिता, नारायण खर्चे। सारिणी जिला बैतूल से खत लिख रहे हैं अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मुनिवाग, पंजाब राव नीलांबकर और संदीप पाटिल। इसी गीत के लिए ये खत आया है छत्री रोड विष्णु मंदिर मार्केट शिवपुरी से सेवकराम धाकड़, यशोदा धाकड़, सखी, कृष्णा, सपना, संदीप, अवधेश, अभिषेक, पुष्पेंद्र, हरिओम और अरविंद धाकड़ का। आदर्श नगर मालोट से खत लिख रहे हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। गुरुग्राम से खत आया है

और श्रोता है हमारे सुरेंद्र मोघा, अंकित मोघा, शकुंतला मोघा, ममता, आर्विका और मोक्षिका। साथ ही एक खत और है इसी गीत के लिए हमारे पास। ये कहाँ से आया है? ये आया है मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से। अभिजीत गंवाड़कर, राही सरिता गंवाड़कर, सिद्धांत गंवाड़कर, प्रिंस एकांश गंवाड़कर। आइए, आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गैम्बलर का ये गीत, और ये है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

और श्रोताओं, फिल्म गैम्बलर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यही संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को है। अब अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: रहे थे मंडला जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है। हर शनिवार
1: एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत में आज हम आपको मिले जुले कलाकारों के कुछ गजलें सुनवाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जगजीत सिंह की गाई इस खूबसूरत सी गजल के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी का प्रसारण और सुनवा रहे हैं आपको कुछ प्यारी चुनिंदा गजलें। अगली गजल आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के स्वर में। आइए आनंद लेते हैं इस नायाब गजल का।

0: श्रोताओं से मैं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें हम आपको कुछ चुनिंदा गजलें सुनवा रहे हैं। फिलहाल एक अंतराल, अंतराल के पार फिर हम आपसे जुड़ेंगे।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
3: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल।

0: श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुन रहे हैं आप चंद खूबसूरत गजलें। आते हैं एक अंतराल के बाद।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
4: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
5: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनप्पुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
4: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: मैं अजय देवगन, मेरे कपड़ों पे दाग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि मेरे घर में है सफाई का एक्सपर्ट तनमन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया। जाग ही जाग, सफाई बेदाग, तनमन है तो कपड़े साफ ही रहेंगे।
0: और श्रोताओं, ये है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में।

उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। डीजे सूर्य कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मनोज कुमार पर, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनके एक बहुत ही चर्चित गीत के साथ, कि उनका नाम लेते ही जुबा पर सबसे पहले शायद यही गीत आता है।

बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप भी श्रोताओं कि हम बात कर रहे हैं मनोज कुमार की, जिनका एक अलग ही अंदाज था, जिनका अंदाज मतलब आप जब उनको पर्दे पर देखते कि हाथों का वो चेहरे पर झुकने वाला सिग्नेचर स्टाइल आज भी हर भारतीय के दिल में एक अलग ही जज्बा देता है कि हाँ जब मनोज कुमार का नाम आता है तो वो उनका स्टाइल सबसे पहले दिमाग में आता है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भरत कुमार यानी मनोज कुमार का आज जयंती है, तो आज इस प्रोग्राम में हम सुनवाएंगे आपको उन्हीं की फिल्मों के कुछ प्यारे चुनिंदा नगमे। हालांकि बहुत बहुत मुश्किल है उनकी फिल्मों से कुछ एक चंद गीत इस छोटे से आधे घंटे के प्रोग्राम में आपको सुनवाना, लेकिन फिर भी कोशिश हमने पूरी की है, उम्मीद है आपको पसंद आई।

श्रोताओ, बात कर रहे हैं आज मनोज कुमार की आज उनका है जन्म जयंती। उनका जन्म 24 जुलाई यानी आज के दिन 1937 को एबटाबाद में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। विभाजन के समय उन्हें जब भारत आना पड़ा अपनी जगह, अपना बर्थ प्लेस छोड़कर, तो वाकई ही एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सी कशिक थी उनके मन में, और यही दर्द आगे चल के देश प्रेम में परिवर्तित हुआ और उन्होंने ऐसी उम्दा फिल्में बनवाई देश को समर्पित कि आज भी उनके गीत हम हर बार 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई सा भी हमारा राष्ट्रीय त्योहार हो, उन फिल्मों के गीत ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम उनके फिल्मों से कोशिश करेंगे कि हर रंग उठा कर लाएं। जैसे मनोज कुमार की फिल्मों में मस्ती भी बहुत थी, उनकी फिल्मों में दर्द भी दिखा, उनके फिल्मों में भारत के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम भी दिखा। तो आइए एक दर्द भरा नगमा उनकी फिल्म से हम सुनवा रहे हैं आपको। फिल्म दो बदन से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत।

शो था मनोज कुमार, जब थोड़े बड़े हुए तो वो दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन बन गए। उनकी फिल्म शबनम, मतलब दिलीप कुमार साहब की फिल्म शबनम में उनका नाम था मनोज। तो मनोज कुमार ने सोच लिया कि जब भी अगर वो फिल्मों में उन्हें हीरो बनने का मौका मिला तो वो अपना नाम मनोज कुमार ही रखेंगे। और देखिए ना, किस्मत ने साथ दिया और जब वो संघर्ष करते हुए मुंबई आए तो उनको जो फिल्म मिली फैशन और कांच की गुड़िया, छोटे मोटे रोल मिले उसमें, लेकिन इतनी ज्यादा उनको उस फिल्मों से कोई पहचान नहीं मिली। लेकिन साल 1962 में आई फिल्म हरियाली और रास्ता, और उसके बाद वो कौन थी और गुमनाम जैसी सस्पेंस और रोमांटिक फिल्मों में उन्हें एक कामयाब हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। लोग उनके हैंडसम लुक और उनकी संवाद अदायगी और उनके जो खास जो अंदाज है उसके कायल हो गए। आइए हम आपको सुनवाते हैं गुमनाम का एक रोमांटिक।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और आज हम आपको मनोज कुमार की फिल्मों से कुछ गीत सुनवा रहे हैं। और भी गीत है आपके लिए, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
1: चलो
2: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय ITI में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। ITI में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय ITI में संपर्क कीजिए।
0: और इस अंतराल के बाद अब हम आपको मनोज कुमार का एक बड़ा ही मस्ती भरा अंदाज आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है अमानत, और मोहम्मद रफी की आवाज, साहिर लुधियानवी की रचना, रवि का संगीत। आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ श्रोता, जा तो रहे हैं इस प्रोग्राम से, लेकिन बस चलते चलते आपसे इतने ही कहेंगे कि मनोज कुमार जी की हर एक फिल्म संदेश होता था देश प्रेम, रिश्तों की मर्यादा, भारतीय संस्कार और इंसानियत। व्यक्तिगत जीवन सम्मान और उनकी अनमोल धरोहर है मनोज कुमार का जीवन। अनुशासन, सादगी और अपने काम के प्रति ईमानदारी का प्रतीक रहा। सिनेमा जगत में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। आज हमने आपके साथ मिलकर उनको याद किया, उनकी फिल्मों से कुछ गीत सुने, हालांकि कुछ नहीं हाथ लगा खास, लेकिन फिर भी कोशिश की थी एक। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: मिलता है कोई चाहने वाला।
0: FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है। अब अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: 188.3 यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। श्रोताओं, यदि आपने कॉल हफ्ते भर के अंदर किया है तो कृपया नए हमारे जो श्रोता हैं उनको मौका दीजिएगा और फोन लगाइए हफ्ते भर के बाद। और अगर आपका फोन हफ्ते या 10 दिन से पहले लगा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि 2660902 और भोपाल का एसटीटी कोड है 0755। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। हेलो
2: हेलो,
1: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
2: पंडित शिवनारायण तिवारी जी बोल रहे हैं सागर से।
1: सागर से तिवारी जी, सागर क्या हाल चाल है तिवारी जी?
2: अच्छी, बारिश हो रही, मुझे मजा आ रहा है पानी का।
1: मजा आ रहा है?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मतलब ये है कि कुदरत भी जो है, प्रकृति है, वो भी चाहती है कि मजे इंसानों को दिए जाए ताकि वो लोग खुश रहे।
2: ठंडक भी है।
1: हाँ जी, ठंडक भी है, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: जावेद खान सर
1: जी, जी जी तो
2: नमस्कार।
1: हाँ तो आपने जब कॉल किया है तो लाजमी है कि आपने पहले से गाना सोच लिया होगा कि कौन सा गाना।
2: सोच लिया, फूल और कांटे का।
1: फूल और कांटे का,

0: हेलो।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मालेगांव से बोल रहा हूँ, तुलसीराज
0: व्यास। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, एक बार नाम दोबारा से बता दीजिए।
1: तुलसीराज व्यास। बोली हो गई है खेतों में, बोली हो गई है।
0: हाँ हाँ,
1: तो पानी की थोड़ी आवश्यकता है
0: जी।
1: महाराष्ट्र में क्या पानी कम गिरता है
0: जी?
1: हाँ, महाराष्ट्र में कम गिरता है, हमारे साइड में तो बहुत ही कम। मालेगांव साइड में आपको ये इसका डिस्ट्रिक्ट वाशिम आता है
0: जी,
1: वाशिम डिस्ट्रिक्ट में मालेगांव का।
0: हाँ हाँ, नहीं नहीं, मौसम पानी वानी नहीं गिर रहा अभी वहाँ पर।
1: हाँ, पानी की आवश्यकता तो कई कई जगह पर तो बाढ़ आ रही है।
0: अच्छा, ये बताइए, जब आपने कॉल किया है पहले से गाना सोच लिया होगा कि कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: आपका शुभ नाम?
0: जावेद खान बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, आप गाना लिख लीजिए सीआईडी का।
0: सीआईडी का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: दीवान है दीवानों को एक नजर चाहिए।
0: अच्छा, दीवाने हैं दीवानों को, ना घर चाहिए ना दर चाहिए ना और पता नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस
1: है ना, पुराना पिक्चर है ये।
0: हाँ हाँ, समझ गए। और ये जो है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज है इसमें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बोले
0: ये गाना दरअसल

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आप सभी का स्वागत है और हमारे अगले कॉलर कौन है हम बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो सर नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: सर दुले सिंह यादव बोल रहा हूं, ग्राम बापचा, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: यादव जी क्या हाल चाल है?
1: सर बढ़िया है सब, बढ़िया, खेती भी अच्छी है सर, फसलें बढ़िया है इस साल।
0: हाँ, पानी भी अच्छा गिर गया।
1: हाँ पानी भी अच्छा गिर रहा है सर, और यहीं से फोन लगाया मैंने, क्या देखा फोन लग जाए तो लग गया सर।
0: अरे देखिए सच्चे मन से अगर हम कोई चीज चाहते हैं तो वो जरूर हो जाती है।
1: हाँ सर
0: है ना। तो यादव जी अच्छा सबसे पहले तो आपने जब कॉल किया तो पहले से गाना सोच लिया होगा फोन करेगी सुने में आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: सर गाना तो ये सुना दीजिए।

0: नदिया के पार का वो गुंजारे चंदन वाला,
1: नदिया के पार का, बिल्कुल हम आपको वो गाना हाँ। सुनवा देते हैं। तो गुंजन रे, उसके बोल गुंजन रे के हमने आप के नोट भी कर लिए और गाना भी हमें हो गए।
0: बताता हूँ सर, गाना गुंजारे।
1: हाँ हाँ, हेमलता की आवाज है, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज है, मुझे मालूम
0: की आवाज में
1: बस बस। तो लीजिए, सुनिएगा ये गाना।
0: ठीक सर, ओके, धन्यवाद सर,
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करेगी, सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं ग्राम उल्झान बोल रहा हूँ, गेंदालाल परिहार।
0: गेंदालाल जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया सर।
0: और कैसा मौसम है आपके आसपास का? ठीक ठाक बेहतरीन?
1: नहीं, बढ़िया मौसम है, पानी गिरा था कल थोड़ा।
0: हाँ हाँ,
1: फसल भी अच्छी है यहाँ पे।
0: फसल अच्छी है, चलिए अच्छी, बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: तो आपने कॉल किया है तो पहला फर्ज है कि आप अपना गाना बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है गुलामी।
0: गुलामी फिल्म का गाना, बिल्कुल ठीक है। गुलामी का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मस्ती में खून लगन।
0: अच्छा, गुलामी फिल्म का, चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं। और सुनाइए बाकी, मौसम अच्छा है?
1: मौसम अच्छा, बदल हो रहा है, ऐसा हल्की हल्की बारिश भी है।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, तो चलिए आप रेडियो सेट पर।
1: सर जी, हमारे कुलासी नदी, आप नाम सुना हो, कुलासी नदी किनारे गाँव है यहाँ पे।
0: हाँ हाँ,
1: उसी किनारे बसा हुआ गाँव हमारा।
0: तो कहाँ है ये, कौन सा गाँव है?
1: उलझावन।
0: उलझावन
1: जी।
0: अच्छा, गांव लोग सुलझावन है और गांव उलझावन है।
1: पता नहीं कब से नाम है सर ये तो।
0: हाँ चलो, अच्छा है, जो भी है, अच्छे नाम होते हैं, ये भी किस बात पे पड़ा ये तो नहीं मालूम होता, लेकिन नाम से कभी कभी इतिहास अगर निकल कर आता है तो बहुत अच्छा निकलता है। चलिए सुनिएगा ये रेडियो सेट पर अपने गाना
1: जी। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुनो में आप सभी का स्वागत है। अगले कॉलर कौन है हम उनसे बात करते हैं। हेलो
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: अच्छा रानू जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं तो जी,
1: और आपके क्या हाल चाल है?
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बताइए आपके यहाँ का मौसम कैसा है? कैसा
1: हमारे यहाँ तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है।
0: अच्छा
1: भोपाल में भी वैसी हो रही है शायद।
0: अच्छा तो तेज क्यों नहीं हो रही आपके यहाँ? कुछ उसका आइडिया
1: हो गई, तेज भी होगी।
0: अच्छा फिर ठीक है। तो अच्छा देखिए आपने कॉल किया है तो सबसे पहले तो मुझे गाना बता दीजिए।
1: मूवी का नाम है अनजाने और गाने बोले काले काले बादल जब भी छाएंगे, ये तो पक्का है।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, हम आपको गाना सुनवा देते हैं।
1: और जी, और
0: जी
1: तो डेडिकेट आपको मेरी बहन नंदनी को रहेगा।

0: विजय पांडे
1: जी, विजय
0: थाना पछड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूँ। दो लाइन पहले सुनाना चाहता हूँ।
1: जी बताइए।
0: जवानी चार दिन की मेहमान है, क्यों मगरूर होती है, अगर देश के काम आ जाए तो बड़ी मशहूर हो जाती है।
1: वाह क्या बात है।
0: काबिले सद एहतराम जनाब जावेद खान साहब को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार आदाब।
1: नमस्कार आदाब। क्या बात है क्या बात है, इतना शानदार लिख लेते हैं आप।
0: जी मैं अपना परिचय बताऊं, मैं विजय कुमार पांडे थाना पछड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे काल को तस्लीम किए।
1: वाह वाह क्या बात है क्या बात है, आप इतना शानदार लिखते हैं। अच्छा आपसे बातें करने का तो मेरा बहुत सारा दिल चाह रहा है, लेकिन समय की पाबंदी होती है ना, सबसे पहले हम आपसे गाना पूछ लें कि कौन सा सुनेंगे आप, कौन सा गाना सुनेंगे?
0: गाना तो मैं बताऊंगा, लेकिन आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, इस पर हम कुछ कहना चाहते हैं।
1: जी बता दीजिए।
0: 23 जुलाई 1927 को यानी आज के ही दिन रेडियो का प्रसारण हुआ था
1: जी।
0: इस ऐतिहासिक दिवस को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो सभी के दिलों की धड़कन बन चुकी है।
1: बिल्कुल,
0: मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि देश की आजादी के पहले मात्र देश में 6 रेडियो स्टूडियो हुआ करते थे। आजादी के बाद से अब तक बहुत से स्टूडियो हो गए हैं और देश की विश्वसनीयता को बनाए रखने का काम आकाशवाणी के लोगों का बड़ा योगदान रहा है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप मुझे गाना बता दीजिए तो हम उसको देख
0: लें। गाना मैं बताना चाहता हूँ, बरसात का समय चल रहा है तो ऐसे में एक गीत याद आ रहा है, बरसात फिल्म का, कि बरसात में हम तुम मिले सनम।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे, सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ सर जी।
0: दिनकर जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया मस्त है। और सर जी को यहाँ राम की तपोभूमि से सत सत राम राम जी भेज रहा हूँ।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, क्या बात है। और सुनाइए, आपके यहाँ का मौसम ठीक ठाक है, बेहतरीन है, पानी वानी ज्यादा गिर रहा है कि नहीं?
1: बहुत अच्छा मौसम है सर जी। आप जावेद सर जी से मेरी बात चल रही है?
0: जी जी बिल्कुल,
1: बहुत दिनों के बाद सर जी बात हो रही है। और इसी तर्ज में थोड़ा एक डायलॉग मार दूं।
0: अरे बिल्कुल इरशाद।
1: काली घटाओं का घेरा हो
0: जी,
1: और सर्द हवाओं का झोंका हो,
0: वाह,
1: और जावेद सर जी से आकाशवाणी मध्य प्रदेश में बात करने का मौका हो, मानो सौगातों की बौछार हो और यहाँ बरसातों की बरसात हो।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या शानदार।
1: चारों तरफ से गए, यहाँ पर काली घटाएं छाई हुई है और मैं अकेला तनहा जंगल में बैठा हूँ, फंस गया हूँ एक जगह, और बाइक खड़ी है मेरी और झोपड़े में बैठा हुआ हूँ।
0: देखिए मगर हम आपके साथ है ना वहाँ पर?
1: जी बिल्कुल सर जी, आप हमारे साथ हैं और आपका प्रोग्राम भी हमारे साथ चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: तेरे दो टकिए की नौकरी से मेरे लाखों का साथ जाए, हाय हाय रे मजबूरी।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, ये बहुत शानदार गाना है, हम आपको सुनवाते हैं।
1: प्रेमदास बाबा मानकारी से फूलचंद पाल जी, इनके साथ ये गीत सुनूंगा।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है।

0: अगले कॉलर हमारे कौन है? हेलो
1: हेलो।
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हम भागचंद्र साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासोदा से। बिल्कुल
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपके तो हम नहीं मिस होता है वैसे।
0: हाँ, तो अच्छा, ये
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपने देखिए कॉल किया है, तो सबसे पहले हमें गाना बता दीजिए, बाकी बाकी बातें हम लगातार करते रहेंगे।
1: बिल्कुल, फिल्म का नाम है जीत।
0: जीत जी, कौन सी वाली
1: हाँ,
0: जीत? तीन
1: धरती पे चाहे जहां भी रहे, धरती
0: पे चाहे कहें कहीं भी रहे या जहां भी रहे, क्या है?
1: बिल्कुल सर बिल्कुल। और मौसम कैसा है भोपाल का सर?
0: बहुत अच्छा है। तो
1: हाँ, यहाँ गंजवासुदा में पानी गिर रहा है सर। बिल्कुल
0: बहुत
1: सही, वो जरूरी है पानी तो।
0: बिल्कुल, ये पानी गिरता रहना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: और आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह कॉल करते रहिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आप सभी का स्वागत है और हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि यदि आपका फोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया अगले नए श्रोताओं को हमारे मौका दीजिए ताकि वो इस कार्यक्रम को से जुड़ सके और वो भी हमारे नियमित श्रोता बन सके। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद अग्रवाल जी, जी अरविंद जी, क्या हाल चाल है?
1: एकदम बढ़िया है, आप भी अच्छे होंगे?
0: बहुत अच्छे। तो अरविंद साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी श्रीनगर जिला महोबा।
0: महोबा मध्य प्रदेश? यूपी?
1: उत्तर प्रदेश।
0: उत्तर प्रदेश। जी जी जी जी। तो देखिए आपने कॉल किया और लाजमी है कि आपने फोन करने से पहले सोच लिया होगा कि आपको कौन सा गाना सुनना है।
1: सबक फिल्म।
0: सबक
1: जी
0: जी। इसका गाना कौन सा?
1: बरखा रानी जरा जम के बरखा।
0: अच्छा, बरखा रानी जरा जम के बरखा, मुकेश जी की आवाज
1: जी।
0: अच्छा चलिए हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों संबंधी प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पारित करने के लिए रखा जाएगा। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि डीआरडीओ के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज पन्ना जिले में 204 करोड़ 26 लाख रुपए लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। IRCTC श्रद्धालुओं के लिए भारत गौरव

पर्यटक ट्रेन का संचालन कर रहा है। इससे यात्री पुरी, गंगा सागर, गया, वाराणसी और अयोध्या सहित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही ठहरने, भोजन, दर्शनीय स्थल भ्रमण और बीमा जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के डिजिटल वैल्यूएशन की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराने की कार्य योजना पर भी अमल किया जा रहा है। देश में घड़ियाल संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश वन विभाग ने हाई अलर्ट घोषित किया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को कल 7 विकेट से हराया। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत सुनेंगे फिल्म हिना से, स्वर लता मंगेशकर के, गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन। फरमाइश छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से है। श्रोता है गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश। अगली श्रोता आष्टा सीहोर से हैं। रामबाबू परमार, विक्रम मालवीय, अर्जुन, जितेंद्र, किरण परमार, रशिका मेवाड़ा, शीतल मेवाड़ा, राम सिंह और संतोष। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म गुरु से। गीतकार गुलजार, संगीतकार AR रहमान। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है अंबेडकर चौक खुरई से। श्रोता है राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, LP रोहित, ललू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत सुनेंगे पाकिजा से, गीतकार कमल अमरोही, संगीतकार गुलाम मोहम्मद। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है बक्सर बिहार से, श्रोता हैं शरफुद्दीन अंसारी, वलीउल्ला अंसारी, राज एसडी अंसारी और नरेंद्र कुमार यादव। इन्हीं के साथ दिल्ली से हैं डब्ल्यू अंसारी, डुमराव से हैं सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफ़ा फाद दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना। अगली श्रोता बक्सर से ही है श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगले गीत सुनेंगे फिल्म करण अर्जुन से उदित नारायण और साथियों के स्वर में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है सपना संगीता रोड इंदौर से। श्रोता हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया। इन्हीं के साथ है लोकेंद्र विक्रम अर्जुन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

निधि चौहान के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म द डर्टी पिक्चर से। गीतकार रजत अरोड़ा ने, संगीतकार विशाल शेखर। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कवर कॉलोनी बड़वा से। श्रोता हैं प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी शिमाली और मीनूराज शिमाली। अगली श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भागवत वर्मा। लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गाराम साहू। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।